नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः।

नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः।

नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः।

साधुमानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय

Hervada, ऐसे तो मां सत कमाया तमसो मां ज्योतिर कमाया प्रत्योर मां अमृतंगमया गणाना आम त्वा गणपति गुम हवा महे कविं कवीना उपम श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्म

Vada, ऐसे तो माँ सत कमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया प्रत्योर्मा अमृतंगमया।

राधा के नटवर लाल कन्हैया, गोकुल बाला गोपरिपाला, राधा के नटवर लाल कन्हैया।